बिनते आहद नायला, अब तुम्हारे छुपने का वक्त है क्या? तुम्हें लगता है हुकूमत तुम्हारे जुर्म को भूल जाएगी? इस बार ना मुझे हया की फिक्र है और ना ही जवां मर्दी की। तोड़ डालो।

0: सरदार घर में कनीजों के अलावा और कोई नहीं है, वो सब गैर अरब है, वो जबान नहीं समझते।
1: जाओ तिजारत खाने की तलाशी लो, शायद घर वाले वहां छुपे हों। जल्दी करो।

0: साले तुम हो, यहां क्या कर रहे हो?
1: झूठा तो भुलक्कड़ होता है, मुझे लग नहीं रहा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे। देखो इसे, गौर से देखो इसे, क्योंकि ये ईमान फरोश और बेदीन है। इसने पहले अपने बहनोई को फांसी तक पहुंचाया और अब इमाम की नौबत है।
0: तुम ये बातें ऐसे कर रहे हो जैसे तुम वहां नहीं थे।
1: इत्तेफाक से मैं था और मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि जैसे ही हिलाल आजाद हुआ, अजम को फांसी पर चढ़ाया गया।
0: बासित की कहानी अलग है, उसके खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
1: अभी कुछ देर पहले मेरे कबीले के लोगों का खून बहाया गया है जो मुझे तुम्हारा कत्ल करने पर उकसा रहा है।
0: दुश्मन नकलिस्तान के पीछे लश्कर कशी कर रहा है और तुम अपना सारा जोर मुझ पर आजमा रहे हो।
1: तुम्हारा कत्ल मेरे दिल को ठंडक पहुंचाएगा। लानत हो तुम पर कि शिया की औलाद होकर इब्ने साद के लिए काम कर रहे हो।
0: मैं जबरन इब्ने साद के लश्कर के हाथों चढ़ गया हूं। खुदा की कसम, अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारे इमाम पर क्या गुजर रही है तो तुम इस वक्त वक्त बर्बाद ना करते। मेरा कत्ल करना चाहते हो तो जल्द से जल्द कर दो, मेरा काम तमाम करो और अपने इमाम की नुसरत के लिए दौड़ो। तलवार लेकर सिर्फ तकरीर नहीं करो।

0: मैंने पूछा कौन हो तुम?
1: सलाम, सिपाहियों की वजह से मजबूरन मैंने ये लिबास पहना है।
0: कहाँ जा रहे हो?
1: कूफे के अलावा जहाँ भी मुमकिन हो।
0: पहले तुमने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया और फिर एक बार भी उसके कब्र पर नहीं गए, और अब शहर छोड़कर जा रहे हो? कुछ अजीब नहीं लग रहा है?
2: खयानतकार की कब्र की ना ही ज़ियारत होती है और ना ही फातिहा पढ़ा जाता है।
0: अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए इतना ही बोझ होती तो उसके कब्र पर आंसू ना बहाते।
2: रहने दो सामिया बेटी, तुमने जो कहा मैंने वही किया।
0: नहीं, जो आंखें मैं देख रही हूँ ना ही उसमें गम है और ना ही खौफ। कुफा छोड़ने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा।
2: बेकार की बातें ना करो।
0: एक दलील, सिर्फ एक दलील दो कि तुम शमीम से नहीं मिले थे।
2: मैंने तुम्हारे लिए अपनी बेटी को खो दिया, इतना काफी नहीं है क्या?
0: इस वक्त शहर में हंगामा है। इब्ने ज़ियाद के लश्कर से लड़ने और चेहरे से नकाब उठ जाने के डर से भाग रहे हो?
2: मामला खराब ना करो और मुझे जाने दो।
0: जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता नहीं जाने दूंगी।
2: क्या कर रही हो तुम? अरे,
0: मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि तुम्हारा कोई दीनो ईमान नहीं है। इतना झूठ खुदा का खौफ करो। तुम्हें याद है फाजिल कि मैंने अपने शहीद शौहर बासित के खून की कसम खाई थी कि अगर तुम उसके कातिल का किसास नहीं लाए तो मैं इज्जत और आबरू भूल जाऊंगी।
3: अगर ज्यादा शोर शराबा करोगी तो तुम्हें भी वहीं पर भेज दूंगी जहां तुम्हारे शोहर को भेजा हुआ है, समझ गई ना तुम?
0: तुम जैसे पस्त कातिल से ताज्जुब की बात नहीं। ए लोगो, कहां हो? दौड़ो, मेरे शोहर का कातिल मिल गया है। शमीम, यही है वो।
2: क्या कर रही हो तुम? अगर तुम उसे कत्ल करना चाहती हो तो कत्ल कर दो, इतना शोर शराबा क्यों?
3: इससे पहले कि मैं सिपाहियों को आवाज दूं अपनी जबान को लगाम दो।
0: तुम क्यों जहमत करोगी? कहां हो ए इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों?

0: साम्या, अगर तुम दीवानी हो चुकी हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नायला को अगर करबला जाने दिया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा।
1: ये उसी से कहो, मेरी नजर में भी अगर नायला कूफे में रहे तो बेहतर है।
0: अगर नायला मेरी बात मानती तो इस वक्त वो तुम्हारी बहू ना होती।
2: अगर आप दोनों को अपने बच्चों की इतनी पड़ी है तो मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र करने दीजिए, ताकि मेरा बच्चा भी अपने बाप का इंतजार ना करता रहे।

0: बात मानती तो इस वक्त वो तुम्हारी बहू ना होती।
1: अगर आप दोनों को अपने बच्चों की इतनी पड़ी है तो मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र करने दीजिए, ताकि मेरा बच्चा भी अपने बाप का इंतजार ना करता रहे।
0: तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो?
1: खुदा ने नायला के झूठ को सच साबित कर दिया।
0: दादीजान, दादीजान!
1: उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
0: यहाँ क्या कर रहे हो तुम मेरी जान? हाँ,
2: इब्ने हुरैस और उसके सिपाही जबरदस्ती घर में घुस गए हैं और अब वो सभी यहाँ भी आने वाले होंगे।
0: यहाँ
1: हमें ढूंढ रहा है?
3: बिनते आहद, तुम छुप नहीं सकती, हर जगह ढूंढो उन्हें।
0: इस घर का मर्द मर गया है क्या जो इस तरह दरवाजा तोड़कर आ रहे हो? तुम्हारी तहजीब कहाँ चली गई इब्ने हुरैस?
3: हमने बहुत ढूंढा, कोई बड़ा नजर ही नहीं आया। शायद मर गया हो और हम बेखबर हो मोहतरमा।
4: सरदार, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ सामान और घोड़े हैं यहाँ।
3: हम माँ को साथ ले चलेंगे, हो सकता है बेटी खुद ब खुद हाजिर हो जाए।
0: क्या करोगे तुम, बताओगे?

0: मेरा इस तरह गुफा छोड़ना मुश्किल है, जबकि मैं आया और उसके दोनों बच्चों से बेखबर हूँ, बहुत मुश्किल है।
1: हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।
0: खुदाया मेरी मदद कर, चलते हैं।

0: साले, इससे ज्यादा अपने बाप को कब्र में अजियत ना पहुंचा। उस लश्कर के पास कसरत और हौसला है, वो जिस तरह खून और माले गरिमत के प्यासे हैं, वो किसी पर रहम नहीं करने वाले।
1: परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुदा की नुसरत उनके बंदों के लिए है।
0: कैसी नुसरत और कामयाबी, इमाम ही मोजेजे से अपनी जान बचा सकते हैं।
2: पिसरे सात के लश्कर को शिकस्त देना इतना भी सख्त और नामुमकिन नहीं होना चाहिए। हम हमला करेंगे और बनी सात के लोगों के साथ उनका काम तमाम कर देंगे।
0: तुम इस मखलिस्तान से बाहर नहीं निकले और नए नवा को दोबारा हासिल करने की सोच रहे हो। कितनी बार तुम लोग करबला के मुख्तलिफ रास्तों पर गए और उल्टे पैर वापस आ गए। मैं इब्ने हज्जाज के लश्कर से वापस आ रहा हूँ, सारे रास्ते बंद हैं।
1: इसने देखा कि इसकी जान तुम्हारे हाथों में है तो झूठ बोलने लगा। ये
0: खुदाया मुझे मौत दे दे, खुदाया मुझे मौत दे दे कि मेरा ईमान तन्हा है और ये लोग हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े। तुम लोग मुझे कत्ल करके ये किस्सा तमाम क्यों नहीं कर देते?
3: शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारे दोस्तों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। गला सूख रहा होगा, लो पानी पियो।
0: फुरात का रास्ता बंद कर दिया गया है।

0: इमाम और उनके असहाब पर पानी बंद कर दिया गया है और तुम मुझे पानी पेश कर रहे हो, ये कौन से दीन में है? मैं करबला से वापस आ रहा हूं, वहां बहुत बुरी हालत है। मुझ पर खुदा की लानत हो अगर मैंने पानी को हाथ भी लगाया, जबकि छोटे और शीरखार बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया गया है। लानत है मुझ पर। चलो, मैं बेदीन और काफिर हूं। देर हो जाए इससे पहले कम से कम तुम्हें कुछ
1: मैं क्या करूं?
0: मसले का हल यहां नहीं, कूफे में है। इब्ने ज़ियाद इस जंग को भड़का रहा है,
1: तो
0: उसका काम तमाम कर दें, फिर पिसरे साथ की फौज खुद ही बिखर जाएगी।
2: ये दीवानगी है, पागलपन है। कूफा के दारुल हुकूमत में घुसना, वो भी जब आजकल कूफा में कोई मदद करने वाला नहीं बचा, ये हिमाकत है।
1: खामोश।
0: कूफा में बहुत कम सिपाही और मुहाफिज बचे हैं, सब करबला भेज दिए गए हैं। तुम्हारी तादाद भी उतनी नहीं कि उन पर हमला कर सको। तुम सब मारे जाओगे, लेकिन उस मलून के कत्ल से पासा पलट जाएगा। फिर उसके तख्ते हुकूमत को उसके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। अगर तुम सब अपने इमाम की मदद के लिए आए हो तो कुछ करो, कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो महशर में हमसे ज्यादा कोई और शर्मिंदा नहीं होगा।

0: तुम्हारी मां के एहतराम की वजह से खोल रहा हूं। वो मीसम का जनाजा उतारने के लिए पूरी बहादुरी के साथ मैदान में हाजिर हो गई थी।
1: उठो।
2: तमाम काफिले और मुसाफिरीन गौर से सुने, अब भी वही हुक्म है जो पहले कहा गया था, कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। जब तक ये माजरा खत्म नहीं हो जाता हौसला रखें, अगर ज्यादा जिद करोगे तो
3: इस दरवाजे से निकलना नामुमकिन है।
2: अब घर लौट जाओ।
3: काश सुई की नोक के बराबर मुझे अपने बाप से कुछ उम्मीद होती। पैसा दिया और निकल गई।
2: जंगी जवान हरकत करें।

0: पैसा दिया और निकल गई।
1: आप उन्हें चाहे जितना भी पैसा दे दें, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, गुफा में तलाश कर रहा है, चलिए चलते हैं।
2: यहाँ खड़े क्यों हो? आज इस दरवाजे से निकलना नामुमकिन है। लौट जाओ।

0: तुम यहाँ से जाओ और फिर वापस ना आना, जैसे अबू शमीम की कोई बेटी थी ही नहीं।
1: अकेली मैं कहाँ जाऊँ?
0: हर सरजमी को कातिल और मुजरिम की जरूरत पड़ती है। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो जाओ।
1: आप कहाँ जा रहे हैं? ना कूफा में ठहर रहे हैं और ना ही मेरे साथ जा रहे हैं। बताइए कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे फिक्र है आपकी।
0: अगर मुझमें गैरत और आबरू होती तो मैं करबला जाता, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मैं डर रहा हूँ कि कहीं रोने के लिए भी कोई और जगह ना मिल पाए। मैं बयाबानों में जाकर दुआ करूंगा, शायद खुदा मेरी दुआ सुन ले और ये किस्सा बखूबी तमाम हो जाए।

0: एहतियात से नायला, थोड़ा आराम कर लो, आराम से, आराम से।
1: मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा, लेकिन अगर उसे कोफा में गिरफ्तार कर लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
0: खौफ और हिरास को दिल में जगह ना दो। तुमने नहीं देखा उसने दरवाजे के सामने कैसे तलवार खींच ली और सिपाहियों को कत्ल कर रहा था।
2: घर नहीं है क्या?
0: मेरी बहू हामला है, थोड़ा आराम कर लें तो हम चले जाएंगे।
2: या अल्लाह, यहाँ मत रुकिए, जाइए यहाँ से।
0: उठो। नजदीक है, इससे पहले जब कूफा कूफा था और यहाँ हबीब, मीसम और हानी थे तो यहाँ शियों का इज्तिमा रहता था।
3: आखिर इमाम के बच्चों पर पानी क्यों बंद कर दिया गया? किस दीन मजहब में बच्चों पर पानी बंद किया जाता है?
1: अगर हम यहाँ रुके तो हमारा काम तमाम है।
0: तो कहाँ जाए, कहाँ जाए?
1: मैं एक ऐसा घर जानती हूँ जिसमें एक अरसे से कोई नहीं है। चलो वहीं चलते हैं।
2: हाँ, चलो, चलो, चलो,
0: हाँ चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।

0: तशरीफ लाए, खुश आमदीद। घर में कोई नहीं है, तशरीफ लाए।
1: माजे तुम आ गए, क्यों इतनी देर कर दी? तिजारत की क्या खबर है? माजिद सुनो,

0: आस्तीन में सांप पाल रहा था। ये काफिर और बेदीन चोर मेरे घर में क्या कर रहे हैं? निकल जाओ यहां से।
1: मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से।
0: ठीक है, अगर नहीं जा रहे तो हम सिपाहियों को बुलाते हैं।
1: सिपाहियों,
2: इसका कत्ल मुबाह और बाबरकत है। मैं एक मुद्दत से माविया के इस कातिल को कत्ल कर देना चाहता था।
3: मेरे भाई आराम से, हम जंग के लिए थोड़ी आए हैं। ये जो कोई भी है और इसने जो भी किया, लेकिन ये इसका घर है।
2: ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने तो इन लोगों का जुल्म अपनी आँखों से देखा है।
4: इस जैसे नजीस लोगों ने तो हमारी दुनिया को भी लूटा है और ऐसे ही लोगों ने हमारे दीन को भी बर्बाद किया है।
3: शर्म करो, वही होगा जो मैंने कहा। जब तक हम लोग इस घर में हैं, ये मर्द मेरी पनाह में है। उठाओ इसे। यहां से ले जाओ इसे, मेरी नजरों के सामने से हटाओ। ले जाओ।
1: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। नायला!

0: जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, एक दूसरे का ख्याल रखें और यहीं रुकें।
1: लेकिन उसके बाद क्या? हम यहाँ कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे?
0: अगर तुम्हारे जहन में कुछ हो तो बताओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि शहर में शियाने अली का आना जाना मना है? ना कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना नमाज और ना बाजार।
2: इन्हीं सब की वजह से हम लोग खाना नशीन हो गए हैं, वरना हम इस वक्त अपने इमाम के साथ होते।
3: इमाम ने हमारी फिक्र नहीं की और ये जंग मोल लेकर इतने शियों को खुद से महरूम कर दिया।
1: करबला के लिए अहलियत होनी चाहिए जो हमारे अंदर नहीं थी। जनाबे हबीब उसी दरवाजे से करबला गए।
0: बकौल मीसम, अगर वो इमाम हैं तो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग बड़े बनकर उन्हें सिखाने लगते हैं।

0: तुम यहीं रुको, मुझे इत्मीनान रहेगा। मैं आहिया की खैरियत देखकर आ रही हूं, परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। रुकना जायज नहीं है, तुम अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मैं जल्द वापस आ जाऊंगी।
1: नहीं, नहीं, बेहतर है कि आपके पास रहे।

0: कोई फायदा नहीं, सात लोग इतने ज्यादा लोग से नहीं लड़ पाएंगे, ये नामुमकिन है।
1: मैंने ऐसे ही अपनी जान हजार बार खतरे में नहीं डाली है।
0: दुश्मन पर हमला करना खुदकुशी है।
1: दुआ करो कि कहीं देर न हो गई हो, तीन दिन से फुरात पर कब्जा है।
0: तीन दिन हो या दस दिन, अगर हम इससे पहले भी पहुंच जाते तब भी कोई फायदा नहीं होता, हमारा बच के निकलना नामुमकिन है।
1: हम जिंदा बचने के लिए नहीं आए, इमाम की जान अहम है।
0: हमारी जाने इमाम पर कुर्बान, लेकिन मेरे साथ यतीम बच्चे भी हैं।
2: वो ना हम पर रहम करेंगे और ना ही

0: हमारे बाद हमारे नामोस पर रहम करेंगे।
1: तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो बताओ।
2: रात होने तक सब्र करना होगा। दुश्मन से भी गलती होने की गुंजाइश है और रात में भाग जाना भी आसान है। मंसूबा वही है जो पहले था। तुम असीर हो और हम गुलाम पहुंचने वाले।
3: तुम्हारा मंसूबा अगर अच्छा और मजबूत होता तो हम लोग दरवाजे पर फंसते नहीं।
0: तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो जनाब? कूफा के मुहाफिज ने तो हमारा सारा झूठ पकड़ लिया। हम इब्ने ज़ियाद के लश्कर के बिल्कुल करीब हैं और हमारा काम तो तमाम है।
1: मंसूबा वही है जो हिलाल ने बताया। हम इसलिए नहीं आए कि जिंदा वापस जाए। इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने के लिए जान भी देनी पड़े तो हाजिर हूं।
0: मैं अब रुक नहीं सकता। उधर जंग छिड़ी है और तुम लोग जान बचाने की बात कर रहे हो।
3: मेरी भी समझ से बाहर है। अगर कोई अच्छा मंसूबा होता तो मैं रुक जाता, लेकिन इस हालत में इमाम की मदद की कोई उम्मीद नहीं। खुदा हाफिज़।

0: आपने सुना नहीं, यहां आने जाने पर पाबंदी है, आप जाइए यहां से, जाइए यहां से। क्या नाम है आपका, किस कबीले से हैं आप, आपका घर वर है या फिर गलियों में ही रहती है आप, कुछ बोलती क्यों नहीं, बेजुबान हैं आप, कहां, बगैर जरूरत के आने जाने पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, आप समझती क्यों नहीं।
1: काश के अपनी जान के डर से ही खड़ी रहती और कुछ नहीं करती। अपने बाप की जान का तमाशा देख रही थी ना, सामिया सही कह रही थी, बेटा नहीं दिया, मेरी बेटी को भी मुझसे ले लिया। इश्क ने तुम्हारी आंख और अकल दोनों अंधे कर दिए हैं। लानत हो तुम्हारे बाप की कब्र पर हिलाल, लानत हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अलग हो? नहीं, तुम्हारा गोश्त और हड्डी मेरे खून से है, तुम मेरी तरह हो, बल्कि हू बहू मुझ जैसी हो।
2: तुम्हें और तुम्हारी तरह के हर शख्स

0: को देखकर मुझे घिन आती है, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं। जब भी मैंने आतिफ और अलवान की आंखों में देखा तो मुझे शर्म आई कि मेरा तुम जैसा बाप है। बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया आपने।
1: मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए जमीन पर जन्नत बनाना चाहता था।
0: जन्नत? मैं जहन्नुम में जा सकती हूँ लेकिन तुम्हारी बनाई हुई जन्नत में नहीं।
2: अंदर ढूंढो, ढूंढो।
1: आ गए अम्र, किसी फरिश्ते की तरह आसमान से जमीन पर आ गए। आओ और मेरे हाथ खोल दो। इन काफिरों ने मुझ पर और नायला पर कोई रहम नहीं किया। आओ, अगर देर में आते तो मेरा खून बहा दिया गया होता। आ जाओ।
2: कहाँ है?
1: कौन कहाँ है?
2: मैंने पूछा वो कहाँ है।
1: कौन कहाँ है?
0: भाग गई।
1: कोई यहां था ही नहीं के भागता।
2: जिस दिन तुम सामिया को असीर करके ले गई उस दिन मुझे याद नहीं था कि औहद की बेटी मक्कार है। मक्कार है।

0: नाहेला, अम्र, अम्र सुनो, अम्र, हम दोनों को एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। आज तुम चालाकी करोगे और कल मैं एक खत के जरिए तुम्हारे पूरे कबीले को बर्बाद कर सकता हूँ। मेरी बेटी को गिरफ्तार ना करो।
1: तुम्हारा दामाद जंग से भाग गया और तुम्हारी बेटी शियों से मिल गई है। तुम्हारा खानदान बर्बाद हो गया है औहद, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से तुम्हारी इस ख्वाहिश को हम रद्द नहीं करेंगे। तुम्हारी बीवी को आजाद कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी मेरी तरफ से तोहफा है।
0: और मेरी बेटी?
1: लेकिन तुम्हारी बेटी फिलहाल अम्र के पास रहेगी।
0: उम्र, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मैं।
1: ले जाओ इसे।
0: नाइला, मेरी बेटी।
2: सब्र करें, सब्र करें।
0: मैं

0: खुशाम दीद सरदार, मर्दों का लिबास आपकी खिदमत में हाजिर है। परेशानी की कोई बात नहीं है, ये लीजिए आप।
1: वाह वाह, शिकार खुद ही जाल में आ रहा है।
2: हम मंसूबा बदल रहे हैं, इब्ने ज़ियाद को मारकर सीधा कर्बला जाएंगे।
1: दूरी ज्यादा है, अगर निशाना चूक गया तो।
2: मेरा निशाना चूक है।
1: तुम्हारा हाथ कांप रहा है हिलाल, निशाना चूक ना जाए।
2: अब तक बहुत देर हो चुकी है, हमें इमाम तक पहुंचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
1: वो पहुंच जाएंगे, जल्दी करो।
0: जनाब हबीब का कत्ल कर दिया गया है, तुम सब क्या कर रहे थे?
1: गलत निशाना लगा दिया।
0: पीछा करो, कहीं भाग ना जाए। देख क्या रहे हो, जाओ उनके पीछे।
2: जब तक ये लोग बदहवास हैं, मैं अधूरा काम पूरा कर दूंगा।
1: बस
3: Ah!

0: मुझे तुम्हारी पनागा और सुकून होना था, लेकिन मैं मुसीबत बन गया।
1: अगर माफ करने की बात है हिलाल, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं।

0: दो चांद एक जिंदगी से ज्यादा अहम है।
1: अगर दुनिया ने उसे मोहलत दी, उसने जिंदगी का मुंह देखा, तो खुदा करे वो तुम्हारे जैसा हो।
0: तुम रो क्यों रही हो? अब तो हम साथ हैं।
1: मेरे दिल पर एक ऐसा जख्म लगा है जो मुझे नहीं मालूम कहां से आया। मेरे आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है।
0: ये ना देखो कि मैं एक जंगजू हूं, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता।
1: एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिस दिन नायला से शादी के लिए तुमने हामी भरी, जिम्मेदारी की वजह से था या दिल से?
2: मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
1: ए भाई, करबला की कोई खबर है?
2: नहीं मालूम, मैं खबर हूँ कि उन्हें पानी दिया या प्यासा ही उन्हें कत्ल कर दिया। उनके बच्चे प्यासे ही थे, अल्लाह जाने क्या हुआ।
0: तुम भी करबला के लिए बेचैन हो? नायला
1: नायला की

0: जान।
1: मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे ये कभी नहीं बताया कि मैं अपने मौला अली के बाद तुम ही से इश्क करता हूं। ये फिरोजे का पत्थर बलाएं दूर करता है। आपके पास रहे तो अच्छा है।

0: इनायला मेरी बेटी।
1: किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो।
2: इस्लामी फौज पर यजीद बिन माविया के मुखालिफों और दुश्मनों पर कामयाबी और कामरानी मुबारक हो। हम खुशी से बागी दुश्मनों की गर्दन उड़ाकर ही सुकून लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ऐसा भी हो जब ये गिरोह बिल्कुल मिट चुका।
3: लानत हो तुम पर, लानत हो।

0: अम्र अम्र अम्र
1: उम्रों मेरा सारा माल तुम्हारा, तुम नायला को चाहते थे ना।
0: मैं तुम्हें मोहम्मद के खुदा की कसम देता हूँ,
1: मुझे कत्ल कर दो लेकिन नायला को छोड़ दो।
0: अम्र अम्र, अम्र।

0: करबला असिराने खानदान बनी हाशिम आ रहे हैं।
1: यजीद की कामयाबी का जश्न मनाओ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मेरी मदद करो।
3: खुश आमदीद।
2: नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अब तुम्हें मुकाम और मर्तबा मिल गया है, तुम्हारी बात मानी जाएगी।
1: नायला पर हजार तोहमतें लगा दी गई ताकि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। कुछ करो नईम।
3: इल्तिजा कर रहा हूँ, कुछ करो।
4: वाकई
2: हाँ, तुम
4: जब तक उसका बाप है उसके सौतेले भाई की क्या जरूरत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी बहू के बगल में उसकी भी कब्र बनाता।
2: मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं कुछ करो।
4: तुम्हें याद है मेरी आंखों के सामने से दूर हट जाओ।
2: नहीं खुदा रहम।

0: खुदाया रहम कर।
1: अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिली इसका एक और मतलब भी जिसने सबक याद कर लिया अल्लाह उसको अपने इम्तिहानों से छुट्टी नहीं देता अपने इम्तिहानों में रखता है उसे हर के रास रार हक आमुख्तन मोहर करदन व दहन रा दुख्तन जो भी हक की बातें सीख लेता है उसकी ज़बान पर खुदा एक मोहर लगाता है और उसको सी देता है परवरदिगार आलम ने इंसान को एक ऐसी तबीयत के साथ खल्क किया है ऐसी खिलकत के साथ खल्क किया है कि उसके अंदर ठहराव हो ही नहीं सकता यानी जिस्मानी तौर पर ये मुमकिन है कि इंसान कहीं ठहर जाए रुका रहे जैसे अभी आप मिसाल के तौर पर मजलिस सुनने के लिए हम मजलिस अर्ज़ करने के लिए रुक जाएंगे लेकिन रूहानी तौर पर इंसान कभी ठहराव में आए ये मुमकिन ही नहीं है ये जो रूह है ये हमेशा अपना सफ़र करती है चाहे बुलंदी की तरफ चाहे पस्ती की तरफ हाँ बदन जो है इसका मामला बिल्कुल डिफरेंट है आप किसी आदमी को जो मिसाल के तौर पर 6 फुट का हो गया हो वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ा कमर झुकते तो देखेंगे लेकिन 6 फिट का बंदा 3 फुट का हो जाए बगैर एम्प्यूटेशन के ये नहीं होने वाला अब वो जो हो गया तो हो गया अब इसी तरीके से जो बच्चा मिसाल के तौर पर अभी 3-4 फुट का है ये नहीं हो सकता कि वो ओवरनाइट 7 फुट का हो जाए हाँ ये तो मेडिसिन में हो जाता है कि सर पे कोई चोट लगी उसके बाद कंटिन्यूस कद बढ़ना शुरू हो

गया, वो 7 फुट का हो गया, ओवरनाइट हो जाए, नहीं ये नहीं हो सकता है। रूह में हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ रूह में हो सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी रूह की है कि रूह अपने सफ़र को कभी तेज़ी से ऊपर की तरफ ले जा सकती है, कभी हल्के हल्के ऊपर ले जा सकती है, ये भी कर सकती है कि तेज़ी से नीचे चली जाए, हल्के हल्के नीचे चली जाए, ये भी हो सकता है, एक रात तेज़ी से ऊपर जाए दूसरी रात तेज़ी से नीचे आए। रूह के अंदर ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं और आप जो अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट गुजार रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने अंदर खल्क कर रहे होते हैं। हम लोग इस माना में कुछ ना कुछ खल्क कर रहे होते हैं। एक थोड़ी सी तफसील में आपकी खिदमत में रिवायत की मदद लेके अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद अलैहि। मशहूर मारूफ एक रिवायत है जिसमें वक्त जिसमें नबी खुदा जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो एक ख़ास वक्त पर एक उन्होंने एक मंज़र देखा कि जिसमें कुछ फसलें होती थीं जो लगती थीं, उनके अंदर तरक्की ज़ाहिर होती थी, कमाल ज़ाहिर होता था, अचानक उनमें आग लग जाती थी, तबाह हो जाती थी। तो गोया नबी खुदा ने, जैसा कि हदीस मेराज के अंदर ये आदत है, हज जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये क्या हो रहा है? फरमाया ये आपकी उम्मत के आमाल हैं, ये फसलें खड़ी करते हैं बचा नहीं पाते, ये जला देते हैं, ये जला देते हैं। अच्छा अब जाहिर है कि ये मसला हमें मुसलमान के अंदर दिखाई देगा, जो काफिर के अंदर तो नहीं दिखाई देगा कि वो जन्नत में फसलें खड़ी कर रहा होगा, ये कारनामा तो हम ही करेंगे, वो तो नहीं कर पाएगा। तो मिसाल के तौर पर ये कारनामा होगा कैसे? हाँ इस तरीके से होगा कि मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ, मौलवी बदनाम हो जरा सबको अच्छा लगता है, तो मसलन मैं एक मजलिस पढ़ूँ उसमें मैं एक अमल करूँ तो ये मेरी फसल खड़ी हुई, बाद में जाके बाहर जाके शो मारूँ मैंने पढ़ी थी, जला बैठा, अब जला दी, अब एक और फसल खड़ी करूँगा, जंगल बसाऊँगा, फिर दोबारा जलाऊँगा। तो बाज़ लोगों का 30-40 साल जो एक्टिव लाइफ होती है इंसान के पास, उसका नेट आउटपुट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो बनाते रहते हैं ख़राब करते रहते हैं। तो हमें यहाँ पे 2-3 बहुत बड़े बड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। पहला सवाल तो ये है कि भाई आप फसल बनाते कैसे हैं? नंबर दो ये कि फसल बचाते कैसे हैं? और इन दोनों से ज़्यादा अहम एक और सवाल है, ये कैसे पता चले कि फसल बच गई या जल गई? ये सवाल अहम है या नहीं है? बहुत अहम सवाल है। कुछ अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु। हम लोग जब कुम में होते थे तो वहाँ पे एक जुमला मशहूर था, दर्स के वक्त के लिए जो तदरीस होती थी उसके औकात के लिए एक जुमला मशहूर था, वो मैं जुमला दोहराता हूँ, उलमा तशरीफ़ फरमाएं। तो जुमला ये था कि 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो दर्स होते हैं उनमें उस्ताद को भी पता होता है वो क्या फरमा रहे हैं, शागिर्दों को भी पता होता है वो क्या सुन रहे हैं। 11 से लेके जोहर तक जो दर्स है उस्ताद को तो पता होता है कि वो क्या फरमा रहे हैं, शागिर्दों में सुनने का हौसला ख़त्म हो चुका होता है। और मशहूर था कि दोपहर के खाने के बाद जो दर्स होते हैं उनमें किसी को कुछ समझ में नहीं आता, किस्मत से ये मजलिस उसी टाइम में पड़ गई है। मैं जो मेहनत कर सकता था वो ये कि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, मैंने कहा कम से कम मैं उस कैटेगरी से दोबारा आ जाऊँ, कुछ को तो समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से भी काफ़ी लोगों ने नहीं खाया, तो हम इसका मतलब है मामला जिंदा है अभी, ठीक है। अल्लाह आपकी सलामती में इजाफ़ा फरमाए, आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, इंशाल्लाह आपकी फसलों को बाकी रखे, इंशाल्लाह दुरूद भेजे मोहम्मद अच्छा। फसलें बनाने में एग्रीकल्चर जो रूटीन में एग्रीकल्चर होती है उस

0: भी तबाह करने के लिए काफ़ी है, इसलिए ये काम मुश्किल है। अब जब आपको मुझे मौका मिले कि उसको तबाह करें ना करें, तब बचेगा। तो बचाना बहुत मुश्किल काम, कहीं ना कहीं कोई इंसान कर देता है और बात बहुत सलीके से करते हैं, यानी बाज लोग होते हैं तबाह करते हैं बुरे तरीके से, बाज लोग होते हैं बड़े सलीके से तबाह करते हैं। तो मतलब बातों में कह गया ये हकीर का काम है। लेकिन ये जो आपने फ्रेज बनाया है ये इसको तबाह करने से बचा नहीं पाएगा। हाँ, फ्रेज तो आपने अच्छा बना लिया लेकिन ये बचा नहीं पाएगा, ये हकीर ने अपना काम हकारत में डाल दिया है। हाँ, बहुत होशियारी की ज़रूरत है कि आदमी कोई गलत काम ना करे। अच्छा, ये तो चलिए बात, मेरा जो असली टॉपिक था ना वो ये कि ये कैसे पता चले कि बचा या नहीं बचा, असल मुश्किल यहाँ। अच्छा, क्यों ये मुश्किल है? इसी खातिर मैं एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, दुरूद भेजेगा मुहम्मद फराजम। एक जुमला कहीं लोग कहा करते हैं डिसऑरिएंटेड लोगों के लिए, वो कहते हैं कि एक सवार था बहुत तेज़ी से जा रहा था, बहुत तेज़ से, इतनी स्पीड से कि लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब वो कहीं से गुजर रहा था तो कोई और भी सवारी पे सवार था, उतनी तेज़ नहीं था लेकिन वो भी तेज़ था, तो उसके नज़दीक आया और उसने पूछा कहाँ जा रहे हो इतनी तेज़ी से? कहने लगा कि इतनी तेज़ी से जा रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, इतनी तेज़ी से जा रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाज़ औक़ात हम लोगों के साथ ये हो जाता है, इबादतों पे इबादतें, एक्टिविटीज़ पे एक्टिविटीज़, काम पे काम, ये नहीं पता हो क्या रहा है, चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पहुँचा, ये नहीं पता, चल रहा है। ठीक, अब उसकी एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह काम आसान करे हम सब के लिए इंशाअल्लाह ताला, दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराज। आप में से शायद यहाँ पे कोई बैठा हो जो बिज़नेस करता हो, कोई दुकान चलाता हो, कोई वर्कशॉप इस तरह का। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं वो बंदा हूँ, क्योंकि अब बुराई का मामला तो अपने ऊपर रख लेता हूँ, तो मतलब मैं वो बंदा हूँ जो एक दुकान चलाता हूँ, सही है, और मुझे वो दुकान चलाते हुए 30 साल हो गए, सही है। अब मिसाल के तौर पर कोई 30 साल के बाद मेरे पास आए और मुझसे पूछे कि ये बताओ ये जो तुम दुकान चला रहे हो इसमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, सही, अगर मैं जवाब में कहूँ मुझे नहीं मालूम, तो आपको क्या लगेगा?
1: 30 साल
0: एग्जैक्टली, कि भाई अगर तुम 30 साल में भी नहीं जान सके कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, रिगार्डलेस ऑफ ये कि ट्रू रियलिटी थी क्या, फ़ायदा या नुकसान उसको छोड़ दो, ये ना जानना ये दिखा रहा है कि तुमने ज़ाया किया। क्यों नहीं पता? तुम क्यों इतने कम अकल साबित हुए कि 30 साल तक कोई काम करते रहे और तुमने रिव्यू ही नहीं किया कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, सही है। मेरी उम्र 60 साल के करीब है, 45 साल कम अज़ कम हो गए मेरे ऊपर नमाज वाजिब हुए, हर रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ना वाजिब है, हर रोज़ 5 मरतबा माह रमज़ान के रोज़े वाजिब, उनको दूसरी इबादतें वाजिब, उनको मुस्तहबात जो दिए उन सबको, सब में मैं 45 साल से एक जुमला कह रहा हूँ, ऐ खुदा जो कुछ कर रहा हूँ तुझसे करीब होने के लिए। और 45 साल के बाद कोई मुझसे पूछे तुम खुदा से करीब हुए या नहीं हुए, और मैं कहूँ मुझे नहीं मालूम, सही। अब सिर्फ एक सवाल है, अगर इसको नहीं मालूम तो इसने किया क्या, पहले साल ही क्यों नहीं पूछा था कि करीब हुआ या नहीं हुआ, सही। एक और मसला ये है, चलो 45 साल गुजर गए, ये यहाँ पहुँच गया, अब अपने आप से पूछ ले कि करीब कैसे होते हैं, निशानी क्या होती है करीब होने की, अब पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अब तो कम से कम पूछ लेना चाहिए कि भाई ठीक है तुमने 40 साल 45 साल इबादतें की, उनमें हर एक में कहा कुर्बतन इलाल्लाह, कुर्बतन इलाल्लाह, अल्लाह से करीब, अल्लाह से करीब, 45 साल के बाद भी कोई तुमसे पूछता तुम करीब हुए या नहीं हुए, तो नहीं मालूम, नहीं मालूम का मतलब क्या, फिर किया क्या तुमने, एक बार

दूसरी बात, चलो अब वो कहते हैं चलो मैं अभी असेसमेंट करता हूँ कि मैं करीब हुआ या नहीं हुआ, किस बेस पे करें? अगर आप मुझसे कहना मौलाना आपकी उम्र 60 साल है मसलन, आप सेहतमंद हैं या बीमार हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो मिसाल के तौर पर कोई कहे कि भाई मौलाना साहब आपका इस उम्र में दिल सही है या नहीं है, सही है, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा कोई टेस्ट करूँगा, उससे देखूँगा कि मेरे दिल की कैफियत कैसी है। पुराने ज़माने में लोग हकीम के पास जाते थे, एक बंदा खुदा मुझे मिला, उस जैसे वो तो शुक्र है कि वो फौत हो गया, वरना वो नब्ज देखकर पूरी ज़िंदगी बता देता था। मैं कह रहा हूँ शुक्र है फौत हो गया कि किसी गलत आदमी की नब्ज पकड़ लेता तो पता नहीं क्या कर देता उसके साथ। एक एक चीज़ बताता था कि तुम्हें 10 साल की उम्र में ये बीमारी लगी थी, इतने महीने चली थी, इसने ये डैमेज किया। 15 साल की उम्र में ये बीमारी लगी थी, इतने अरसे चली थी, इसने ये डैमेज किया है, इस बीमारी का ये असर बाकी है, इस बीमारी का कोई असर बाकी नहीं है। बीमारी बता देगा आपको कि ये हुई थी, नाबीना था, नाबीना था। और मज़े की बात यह कि उसने तिब नाबीना होने के बाद सीखी थी। हाँ, वो अजीब मार्का था, उन मैंने खुद देखा, अगर मैं खुद नहीं देखता तो मैं कभी भी नहीं मानता। और मैंने उससे पूछा कि मसलन चलो ये तो सब बता रहे हो, बताओ मेरा दिल कैसा है? उसने कहा ये इस नब्ज़ में नहीं है, उस नब्ज़ में है। अल्लाह अकबर। फिर उसको उठा के देखा, अच्छा कुछ का तो मुझे पता था कि मेरे ऑर्गन्स की क्या पोजीशन है, तो मैंने उसको टेस्ट करने के लिए बताया उसकी पोजीशन बताओ। उसने कहा मैं बताता हूँ। उसने चेक किया, जो चीज़ मुझे MM में पता थी, CM में नहीं, सेंटीमीटर्स में नहीं, मिलीमीटर्स में मुझे पता थी, उसने मिलीमीटर्स में सही बताया था। जो मुझे मिलीमीटर्स में पता था वो उसने मुझे वो सही बताया। और ये भी बताया कि ये जो ख़राबी आई है ये किस साल आई है, इस वक्त आई थी, सही पकड़ता था। तो अगर मुझे जिस्मानी कोई बीमारी है तो चलो आज तो मुझे वो ऐसा कोई हकीम शायद नहीं मिलने वाला, और होंगे शायद कहीं दुनिया में, तो हमें पता ना होगा। लेकिन क्या होगा, मैं जाऊंगा ECG करूंगा, फ़लाँ टेस्ट करूंगा, फ़लाँ टेस्ट करूंगा, उससे मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा भाई मेरे दिल की हालत ये है। तो हम मेडिकल साइंसेज में ये कर रहे होते हैं। आप लोग मुझे बताएं, मैं अपनी इबादतों का कैसे पता करूँ? बची या नहीं बची? हाँ अच्छा, अगर मैंने अभी मालूम नहीं किया तो क्या होगा? दो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर गड़बड़ थी, दो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर गड़बड़ थी। आपकी खिदमत में वो भी जल्दी से अर्ज़ करूँ। ये हिस्सा मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में अर्ज़ कर चुका हूँ, शायद कभी यहाँ पे आके भी अर्ज़ किया हो। वो ये कि हमारे अंदर हमारे तमाम आमाल का एक स्टोरेज है, उसका नाम है कल्ब। ये दिल नहीं, नफ्स और रूह के साथ एक कल्ब है, उसकी कैफियत है, उसमें सारे अमाल स्टोर हो रहे हैं। यही कल्ब आपके फैसलों को प्रोसेसिंग करता है, यही कल्ब आपको हायर रियलिटीज़ के साथ, आला हकायक के साथ, खुदा, नबी, इमाम, उनसे कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर मेरे पिछले अमाल सारे कबूल हो रहे हैं या मसलन ज़्यादातर कबूल हो रहे हैं, तो मेरा कल्ब पाको पाकीज़ा है, उसमें प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होगी। प्रोसेसिंग अच्छी होने का मतलब क्या है? मैं गुमराही का फैसला नहीं करूँगा, हिदायत का फैसला करूँगा। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये कि मेरा कनेक्शन हायर अथॉरिटीज़ के साथ अच्छा होगा, खुदा की तरफ से ब्लेसिंग्स आना आसान होंगी। अच्छा, अगर वो पिछले अमाल कबूल नहीं हुए तो क्या होगा? तो इसका मतलब है मेरा कल्ब तारीख होगा, नाऊज़ बिल्ला। इसका मतलब है मेरी प्रोसेसिंग गलत होगी, मैं फैसले भी करने की कोशिश करूंगा तो गुमराही का फैसला कर डालूंगा। दो, नंबर तीन क्या मुसीबत? नंबर तीन ये मुसीबत है कि मेरा ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सही। तो एक तो ये मुसीबत आने वाली है कि अगर खुदा ना करे मेरी पिछली इबादतें कबूल नहीं हुई तो मेरा कल्ब तारीख होगा, प्रोसेसिंग ख़राब हो जाएगी, ऊपर अथॉरिटी से कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, कोई हकीकत मेरे ऊपर कश्फ नहीं होगी। दूसरा मसला ये, जैसे ही मैं मरूँगा इंशाल्लाह, एक ऐसी कैफियत में अगर कबूल नहीं हुई, ऐसी

कैफियत में अपने आप को देखूंगा कि मैं मरने से पहले ही मर चुका हूँ। हम देखा कुछ लोग मर रहे होते हैं, उनके चेहरे पे एक अजीब किस्म की वहशत आती है। ये अपनी वो हालत देखते हैं जो जिसमें अब इन्होंने बरज़ख में रहना है, तो वो देखते ही परेशान हो जाते हैं कि इस बला का अब क्या होगा जो मैं हूँ। ठीक है, तो अगर इंसान को इस मुसीबत से निकलना है, जो तीन प्रॉब्लम जिंदगी के अंदर और एक प्रॉब्लम मरने के बाद, तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए भाई मेरे आमाल कहाँ पर खड़े हैं, बचे या नहीं बचे। हाँ, तो इस खातिर ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके लिए मैं दो टेस्ट आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, दो टेस्ट आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उन दो टेस्ट से मेरा ख्याल है ये मदद मिल जाएगी कि इंसान ये देख ले कि जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यूएशन, अपनी वैल्यूएशन कर ले कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हाँ, उर्दू में एक मिसरा है, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सही, बाज़ मानवी मसाइल ऐसे हैं कि जिसने दुनिया से सबक ले लिया फिर उसको छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर खा लिया है तो फिर ऊपर से खाना नहीं आएगा, ये मुश्किल है, बहुत सख्त मुश्किल है। तो हमें देखना पड़ता है कि भाई होना क्या है। हाँ, तो जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिली, इसका एक और मतलब भी, जिसने सबक याद कर लिया अल्लाह उसको अपने इम्तिहानों से छुट्टी नहीं देता, अपने इम्तिहानों में रखता है उसे। हाँ, हर किरा असरार हक आमोख्तन मोहर करदन व दहनरा दोख्तन, जो भी हक की बातें सीख लेता है उसकी ज़बान पर खुदा एक मोहर लगाता है और उसको सी देता है, कहता अब ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, तो यहाँ एक अजीब सा एक निज़ाम चल रहा है, और मामूलन ऐसे लोग जिन्होंने वो सबक सीखा होगा उसकी हम लोग इज्जत नहीं करेंगे। हाँ, चूँकि हमारे इज्जत के मेयार कुछ और हैं। तो दो एवेल्युएशन के मेथड्स मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ, इंशाअल्लाह उससे मदद मिल सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सादा सा एक काम है कि बहुत अहम है, सादगी के बावजूद थोड़ा मुश्किल है, सादगी के बावजूद है मुश्किल। एक पेपर ले लें मसलन A4 टाइप का, बीच में एक लाइन लगाएं परपेंडिकुलर, दो कॉलम मिल जाएंगे। सही, मसलन ये सोचिए कि खुदा की 99 सिफतें हैं, जिन सिफतों में मैं खुदा की सिफतों में नज़दीक हूँ खुदा से, वो कौन सी हैं। मसलन पहली लाइन सच्चाई, कितने परसेंट हूँ, कितने परसेंट हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू, किसी को नहीं दिखाना है, अपने पास रखना है, बाद में जला देना, तो किसी को पता भी ना चले। पेपर पे लिखो मसलन पहला सच्चाई कितने परसेंट हूँ, दूसरा अमानतदारी कितने परसेंट हूँ, तीसरा रहमदिली कितने परसेंट, चौथा अदालत, परसेंटेज निकालो। सही, 5-10 सिफतें लिखें और उसके ऊपर थोड़ा अपना परसेंटेज डाल दें। सही, दो कॉलम क्यों करें, मुश्किल ये है कि या इधर रहमान है तो उधर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है, रहमान के अगेंस्ट सिर्फ शैतान होता है। तो अगर आपने रहमान वाले कॉलम में 25% लिखा है तो उधर वाला कॉलम बहुत भारी हो जाएगा। हाँ, ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे भी लिख लो। सही, फिर नीचे वाली लाइन में ले जाके देखना कि भाई मैं किससे ज़्यादा नज़दीक हूँ। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको कुरान करीम ने बयान किया है, उन्होंने खुदा मुसा ने फरमाया सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगतन, अल्लाह का रंग और इस रंग से बढ़कर कौन सा रंग होगा। वो नीचे वाली लाइन है ना, ये बताएगी।

0: मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक वो है जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपको पता है स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है इसमें कोई बड़ाई फजीलत नहीं है, स्टैंडर्ड है। आपको कहते हैं गाड़ी का ये स्टैंडर्ड वर्जन है, इसका मतलब है इसमें कोई टॉप ऑफ द लाइन चीज़ नहीं होगी। तो आपके पास दो ऑप्शन आए कैरेक्टर के, एक एक मामले के अंदर दो ऑप्शन है आपके पास, आप ये अमल करें ये एज़ पर स्टैंडर्ड है, या आप ये अमल करें इसको मैं क्या कहूँ स्टैंडर्ड के मुकाबले में, इसको मैं कहूँगा फजीलत, फजल। वला तंसवुल फजल बैनकुम, खुदा ने मुताल फरमाता है अपने मामलात में फजीलत को मत भुलाना, फजीलत दिखाओ। ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चेक करना चाहिए कि जब ऐसी किसी पोजीशन में आता हूँ जिसमें मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड रिएक्शन दिखाऊँ, अब मैं हराम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड रिएक्शन दिखाऊँ या बफजीलत रिएक्शन दिखाऊँ, ज़्यादातर मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड रिएक्शन दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं वो इंसान हूँ जिसको फजीलत नहीं मिली है। और अगर मैं वो रिएक्शंस दिखा रहा हूँ जिसमें फजीलत है, इसका मतलब है मेरी रूह के अंदर फजीलत मौजूद है। हाँ, अब आप जाकर देखें कि जो सोसाइटीज़ में लोग बिहेव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। मिसाल, मैं एक मिसाल बिजनेस से देता हूँ, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। तब किसी ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, फ़र्ज़ कर लेते हैं एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के अंदर उसने मिसाल के तौर पर कहा भी मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, आप मुझे इतना रिटर्न दीजिएगा, वो सब कुछ बातें हो गई, सही है। किसी क्लॉज में ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने देना कब है, सही है। अब मैंने सारा एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ, और करने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल पे ख़त्म होगा तो मैं उसको प्रॉफिट दे दूंगा, सही, वहाँ नहीं लिखा हुआ, क्लॉज में नहीं लिखा हुआ। अब 3 साल पूरे हो गए, मैच्योर हो गई उसकी अमाउंट, अब वो आया मुझसे प्रॉफिट लेने के लिए, और मैं उसको याद दिलाऊँ कि ये तो नहीं लिखा कि कब देना है, जब मेरी मर्ज़ी आएगी दे दूँगा, सही है। अच्छा, फजीलत क्या है? फजीलत यह है कि भाई क्लॉज में लिखा है या नहीं लिखा है, किसी ने पैसा दिया या सही, ये बेचारे को रिटर्न चाहिए, सही, क्लॉज में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लीगली तुम जीत जाओगे केस, लेकिन आया ये पस्ती है या ये बुलंदी है, ये पस्ती है, अपॉर्चुनिस्ट बने हुए हो तुम, मौका परस बने हुए हो, सही है। ये दिखाएगा कि इस बंदी की ट्रू ह्यूमैनिटी है क्या,
1: असलियत क्या है,
0: असलियत क्या है, सही। आपको मुझे अपनी असलियत देखनी है ना, ऐसे मौक़ों पे देखूं हम हैं क्या। अच्छा, अब इसको मैं और कैसे देखूं, सादा सा मसला है, किसी से जाकर ये पूछूं कि ये बंदा अगर ऐसी जगह पे आए तो क्या करेगा, तो कुछ लोगों के बारे में पब्लिक फौरन कहेगी कि ये बंदा दे देगा, इसने पूरी ज़िंदगी में कैरेक्टर की वो डिग्निटी दिखाई है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये फौरन दे देगा। और कुछ लोगों के बारे में जो सुनेगा वो कहेगा बेटा गए तुम, तुम्हारा काम पूरा हो गया है, उसके हत्ते चढ़े हो जो क्लॉज के होते भी शायद ना देता।
1: पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
0: मुझे पूरी जिंदगी मेहनत करनी है करैक्टर की डिग्निटी को वहां तक पहुंचाना है कि जो बंदा सुने कहेगा अगर इसके हाथ में है ना मसला मिल जाए, कोई वो डिग्निटी दिखाएगा। सही, अहले बैत ने हमें ये सिखाया। अब अच्छा, अब एक मुश्किल है यहाँ पे, हमारे माशरे में अगर कोई ऐसा हो तो लोग उसे क्या कहेंगे, एग्जैक्टली रिवायतों में भी ये लिखा हुआ है कि तुम आखिर जमान में अगर अपने ईमान पे बाकी रहोगे तो लोग तुमको बेवकूफ़ कहेंगे। कहा बा ईमान वो होगा जो बेवकूफ़ कहलाने पे सब्र करे और अपने ईमान को बचा ले।